0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम जान चेक यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

राम राम सन्जे 5 बजे खारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। घोराई उपमहानगरपालिकामा कुच्छु खेलकुद कार्यक्रम हन बजेटको अभावको कारण सञ्चालनमा निहुलक विषय हन लेखन सामाजिक सञ्जाल औ विभिन्न अनलाइन माध्यमसे अहिलेको एकतर्फी भरमपूर्ण समाचार प्रतिदानको विभिन्न खेलकुद संस्थासे आपत्ति जना रखल। आज जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा गत भदौ 23-24 गते हुलक जेएनजी आन्दोलनको क्रममा वडा कार्यालय उपमहानगरपालिका कार्यालय लगायत सरकारी संरचनामा हुलक तोडफोड तथा आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण औ व्यवस्थापनका लागि पालिकासे आन्तरिक सोर्से संकलन हुन कुल बजेटका 70% कटौती गरिकन 30% बजेट विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन गर्न निर्णय गर्दा उल्लेख गरिगेल बा। उक्त निर्णयको कारण आर्थिक वर्ष 2082-83 सञ्चालन हुन 9 अन्तर विद्यालय स्तरीय खेलकुद कार्यक्रमको लागि बजेट अभाव उल्लेख विज्ञप्तिमा जनाइगेल बा। उस्ताकन यी विषय हन लेखन कुछु व्यक्तिको नक्से सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मीडिया मार्फत एकपक्षीय भारामक ओ कपोल कपोलपित सूचना प्रभाव गर्न खेलकुद संस्था तथा उपमहानगर पालिकाका बदनाम गरिन प्रयास गर्ल कति विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिगेल बा। बजेट अभावको कारण प्रभावित कार्यक्रम बारे सम्बन्धित खेल संस्थान यसले अघि जो जानकारी गराएकलक को आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 कार्यक्रम बारे समेत सम्बन्धित पक्षहरू जानकारी देशकलक जना राखल। संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा दाङ जिल्ला बक्सिङ संघ, कोराई ब्याडमिन्टन क्लब, दाङ जिल्ला फुटबल संघ, दाङ जिल्ला तेक्वान्डो संघ, दाङ जिल्ला आईटीएफ तेक्वान्डो संघ, दाङ जिल्लाको बास्केटबल संघ, दाङ साइकल सिटी, सितोरियो कराते संघ, दाङ तथा घोराई नगर खेलकुद विकास समितिका प्रतिनिधि कनक हस्ताक्षर रहल्बा। विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील थारू समुदायको अगुवाङ्कनक्से सिकल सेल एनिमियाको रोकथाम नियन्त्रण ओर उपचार सेवाहन प्रभावकारी बनाएकला माकर्ती राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा ज्ञापन पत्र बुझारखल। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्र लामी छानेहन एक ज्ञापन पत्र बुझिती उङ्कनक्से सिकल सेल एनिमियाबारे जनचेतना तथा परामर्शकलाग अस्पतालमा छुट्ट डेस्क स्थापना हुइपर्ना लगायतका माग धरल खुल्छ। ज्ञापन पत्रमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सिकल सेल एनिमियाको विरम्यकनक परामर्श केन्द्र स्थापना गर पर्ना, उक्त परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हुई पर्ना, नेपाल सरकारसे समन्वय गरिकन समय समयमा थारू समुदायमा सिकल सेल एनिमियाको शिविर सञ्चालन गर पर्ना, सिकल सेल एनिमिया रोगको बारेमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर पर्ना, नेपाल सरकारसे उपलब्ध गरिती अहिलेका बीमा सुविधा ओ निशुल्क औषधि उपचारसँग वाकर सहज वातावरण मिलाइ पर्ना, लुम्बिनी प्रदेशमा निशुल्क सिकल सेल परिवार बीमा कार्यक्रम समुदाय स्तरमा जो व्यापक पर्ना लगायत माग अघारी सार्गिलबाट खासगरिकन सिकल सेल एनिमिया मुख्यतया बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा बढ़ी देखिल बा। यी रोग वंशाणुगत हुना हुलक खोज्छ। तराईका थारू समुदायमा एकर संक्रमण दर करिब 10-12% रलक अध्ययनसे देखा राखल। दाङको चुरे क्षेत्रमा वन्यजन्तुको संरक्षण ओ जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि संरक्षण पोखरा निर्माण गरिगेल बा। वन क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्ति जाई शुरू गरल पाछ वन्यजन्तु हुन सहज रूपमा पानी उपलब्ध गरिन उद्देश्यसे डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखरीका वन्यजन्तु मैत्री पानी पोखरी निर्माण हुन प्राथमिकता दिगिलख हो। कार्यालयसे चालू आर्थिक वर्षमा 3 लौगो पानी पोखरा निर्माण गर्लक बाकलसे 1 पुरान पोखरीको मर्मत सम्भार कैराखल। लम्ही 8 स्थित उपकार सामुदायिक वन, गंगा सामुदायिक वन गढ़ुआ लगायतको क्षेत्रमा निर्माण करगिल पोखरीले वन्यजन्तुको व्यास स्थान संरक्षणमा सहयोग पुगिन पुगाई शुरू हो रहल। डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखरीका प्रमुख गणेश खड्काले वन संरक्षणसँग वन्यजन्तुको सुरक्षित आवास व्यवस्थापन हुन प्राथमिकतामा धर्गिल बा। उहाँका अनुसार पानीको खोजीमा वन्यजन्तु बस्ती तथा सड़क क्षेत्रमा पुग्न अवस्था घटबेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुगल बा। मानव अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बाँकीका डुडुवा छाउ आसमानपुर स्थित जयन्दु बाल सुधार गृहमा रहलक कानूनी विवादमा पर्लक बालक हुकनकला खेलकुद सामग्री सहयोग कैराखल। सुधार गृहमा पर्याप्त खेलकुद सामग्रीको अभाव हुल्पा छ। उहाँ रलक बालक हुकनक लिखित रूपमा सहयोगको अनुरोध गर्न उस्तक सुधार गृह
प्रशासन सेफी अनुरोध तरल पाछा फोरम से आवश्यक खेलकूद सामग्री उपलब्ध करागिलक जनागिल बा एडवोकेसी फोरम नेपालको लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम से बाल सुधार गृह न उक्त खेलकूद सामग्री हस्तान्तरण गरिरखल फोरम से बालक हुकनकलाक क्यारम बोर्ड ओ फुटबल उपलब्ध करागिलक हो सामग्री हस्तान्तरण कर्ती अधिवक्ता गौतम से कानूनी विवादमा पर्लक बालक हुकनक खेलकूद मनोरंजन ओ शारीरिक तन्दुरूस्ती लाग सामग्री प्रदान गरिगिलक बटवा रखल यी सहयोग से बालक हुकनक स्वच्छ जीवन मनोरंजन ओ दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ना उहाँक काहीबाटिन सुधार गृहका प्रमुख किशोर राणा से यी प्रकारका सहयोग से बालक हुकनक लाग शारीरिक ओ मानसिक रूपमा स्वस्थ ओ सन्तुलित रह मदत पुग्न उल्लेख गरिरखल खेलकूद सामग्री प्राप्त करल पाछ उहाँ रलक बालक सेफे खुशी व्यक्त करलबाट पर्याप्त खेलकूद सामग्री निहुबेर खेल्न ओ मनोरंजन गर्न समय प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर निपयरलक अवस्थामा आवश्यक खेलकूद सामग्री प्राप्त करल पाछ शारीरिक तन्दुरूस्ती ओ मनोरंजनमा भारी सहयोग पुग्न विश्वास बालक हुकनक से व्यक्त करलबाट ओ जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका तीन शान्तिनगरका 61 वर्षीय भक्तबहादुर कठायत से शिलाजित बेचकन वर्षेनी लाखौं रूपियाँ आमदानी कर्ती आइलबाट 2056 साल से उहाँ से निरन्तर शिलाजित संकलन गरिकन व्यापार कर्ती आइलबाट यी वर्ष केल शिलाजित बिक्री से 10 लाख रूपियाँ बराबरका आमदानी गर सफल हुइल कठायत बटवा रखल उहाँ से प्याकिङ गरिगिलक शिलाजित प्रयोग प्रति किटोला 1200 रूपियाँमा बिक्री कर्ती आइलबाट 1 केजी शिलाजितका मूल्य 1 लाख रूपियाँसम्म पर्ना कर्था यी वर्ष से उहाँ से 10 केजी शिलाजित संकलन कैकन बिक्री करबेर 10 लाख रूपियाँ बराबरका आमदानी कर लखुइट खुद्रा ब्याचबेर प्याकिङ कैकन बजारमा पठाए बेर दब्बर से बढ़ी मूल्य पाजिन उहाँ कठाए त प्याकिङ कैकन बिक्री वितरण कर्ती आइलबाट शिलाजित संकलन गर दान्चे हुलेसेफे जोखिमपूर्ण काम हो उच्च सेमाल भीर चहरकन चट्टानका साङ्गुरा कापमा शिलाजित निकार पर्ना हुइलक वर्षे हरेक क्षण ज्यानको जोखिम फे ओस्तहकबा हुइठा त आज थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन्न सिक्ने बाटी अखसक खबर मसी समाचार कक्षका सकु संग्रहसँग म शालिक राम चौधरी विदाहिटु रिर मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्की
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो

0: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा
1: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराहीदान फोन नम्बर 082-581-210 थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ
2: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि
3: वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा
4: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू
3: हात खुट्टा भाँचिएको हात खुट्टा झमझमाउने ढाड कम्मर दुख्ने हार्ट जोर्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा
5: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा
6: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
7: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा
5: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
7: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा
8: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा
5: साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू
2: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई जाँच फोन नम्बर 082-583-218
9: मध्यपश्चिम जाँच चेक यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ